0: pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
3: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: कल्याण निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
7: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में 1 से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
5: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नियारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
8: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
5: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $5,00,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
9: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्ता के शब्द हैं 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्री परिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाए तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
5: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139

0: real time te kohima town laga bitor laga real time te traffic update unidaga sobilla kapnar khan juri thagibi program lote aku ani diabo real time te traffic update
1: fm tragoban
2: 103 megahertz
1: news music and entertainment
2: this is fm tragoban
1: fm 103 megahertz
0: जी हाँ अपना खन हुनी ऐसे आकाशवाणी एफएम ट्रैक पर 110 मेगाहर्ट्ज हुनी जगह सब बिलाक अपना खन सब क्या को दोबारा स्वागत करें ऐसे और इतने समय तक अपना खन कारण यानी दिया से एसएमएस रिक्वेस्ट डेट इस अपुनी पसंद गाना हिंदी फिल्मी गिट्स प्रोग्राम टे और जुड़ी अपना खन इतने प्रोग्राम टे आएगी ना शामिल होगी ना अपना खन ना पसंदीदा गीत खन हुनी बोले मोन ऐसे कोयले मने लिखेगी ना पढ़ाई डी बी 9436805333 टे नंबर आपको कोई दिया से 9436805333 इटू नंबर टे लिखी गिना पढ़ाई दी बी किंतु जिते आपने खन मैसेज टाइप करुँगो फिल्म लगा नाम आरो जुन्टु गीत अपने खान हुनी बुले करने इच्छा से गानाला टाइटल ठीक ठाक लिखी गिना पढ़ाई दी बी टिटिया मुई या टिप्रा अपने खान ला पसंद टिटा गीत खान बजाई दिया हो बो तो अपने खान ला मैसेजेस मुई रुकी था कि वो इतु समय तो हुनी बो टू स्टेट्स फिल्म की गीत गए से आकृति कटकर और शाहिद मालिया

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने

0: पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ।
1: मैं मिसेस रंजीत कौर, इंडियन कैंसर सोसाइटी दिल्ली ब्रांच की एक वॉलंटियर हूँ। आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर विजेता भी हूँ और पिछले 14 वर्षों से इंडियन कैंसर सोसाइटी दिल्ली ब्रांच से जुड़ी हुई हूँ। हमारा आज का विषय है साइलेंट स्ट्रगल्स, ब्रेकिंग द टैबूज अराउंड वुमेन्स हेल्थ। हमारे आज के इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं पंचशील फाउंडेशंस। मैं इंडियन कैंसर सोसाइटी दिल्ली ब्रांच की ओर से पंचशील फाउंडेशंस का आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह अक्सर हमारी बातचीत से गायब रहता है, लेकिन लाखों महिलाओं के जीवन को प्रभावित करता है, और वे है साइलेंट स्ट्रगल्स, यानी खामोश संघर्ष। ये वो संघर्ष है जो महिलाएं बिना किसी आवाज को उठाए, बिना किसी शिकायत किए हर दिन झेलते हैं। हमारे समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े कुछ मुद्दे जैसे मासिक धर्म यानी पीरियड्स, प्रजनन स्वास्थ्य, यौन संबंध, स्तन स्वास्थ्य इत्यादि आज भी शर्म और चुप्पी से ढके हुए हैं, क्योंकि इन विषयों पर खुलकर बात करना सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के कारण गलत माना जाता है। सरल शब्दों में इन विषयों पर चर्चा करना अस्वीकार्य तथा वर्जित है, मतलब ये सोशली अनएक्सेप्टेबल व्यवहार माना जाता है। बचपन से ही लड़कियों को सिखाया जाता है कि अपने शरीर के बारे में बात नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं होती। दर्द सहना सामान्य बात है, और धीरे धीरे उनकी एक आदत बन जाती है और वे कुछ लक्षणों को नजरअंदाज करने लगती हैं, और तब तक उस दर्द को चुपचाप सहती रहती हैं जब तक स्थिति बिगड़ ना जाए। उनकी चुप्पी के पीछे छुपे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पीरियड्स में अत्यधिक दर्द होना, पीरियड्स में अत्यधिक रक्त बहाव होना, इरेगुलर पीरियड्स होना, पीसीओएस, पीसीओडी, स्तनों में गांठ या परिवर्त, हार्मोनल इम्बैलेंस, गर्भावस्था में आई चुनौतियां जैसे मूड स्विंग्स, डिप्रेशन इत्यादि। लेकिन कभी कभी इन सब चीजों के पीछे छिप जाती है एक गंभीर बीमारी, कैंसर, जो जानलेवा भी हो सकती है। इस चुप्पी के पीछे कई सामाजिक, भावनात्मक और व्यक्तिगत कारण होते हैं, जैसे पुराने रूढ़िवादी विचारों के कारण बात करने वालों को बेशर्म माना जाता है और इन विषयों पर बात करना बिल्कुल वर्जित है। लड़कियों को पीरियड्स के दौरान मंदिर में, रसोई में नहीं जाने दिया जाता और उन्हें अशुद्ध मानकर अलग बिठाया जाता है, जिससे उनमें हीनता की भावना पैदा होती है। गर्भपात करवाना चाहे मेडिकल जरूरत हो, हमेशा छुपाया जाता है, नहीं तो उन पर चरित्रहीन होने का टैग लग जाता है। बांझपन होने का दोष भी सिर्फ लड़कियों को ही दिया जाता है। मेनोपॉज के टाइम पे पसीना आना, हॉट फ्लैशेस होना बड़ी नॉर्मल सी बात है, परंतु वे बताती नहीं है क्योंकि उसके बारे में बात करना अलाउड नहीं है। पीरियड्स के दौरान दर्द को सहकर भी ऑफिस जाती हैं, स्कूल जाती हैं, क्योंकि किसी को पता ही ना चले कि पीरियड्स चल रहे हैं। पैड्स को छुपाकर काले कागजों में छिपाकर रखती हैं और उसके बारे में बताना नहीं चाहती। और इस चुप्पी की कीमत क्या होती है? कीमत होती है बीमारी के आखिरी पड़ाव तक आकर इलाज करवाना शुरू करवाना, जबकि तीर कमान से निकल चुका होता है। महिलाओं के आम कैंसर्स में से स्तन कैंसर एक है। अगर उसे समय रहते पहचान लिया जाए तो उसका इलाज संभव है और किसी की जान बचाई जा सकती है, परंतु शर्म और डर के कारण ना तो वो खुद चेक करती हैं और ना अपनी माँ बहन डॉक्टर को दिखाती हैं। और पकड़ तब में आता है जब फोर्थ स्टेज कैंसर हो चुका होता है। इसी तरह सर्वाइकल कैंसर की नियमित जांच जैसे पैप स्मियर टेस्ट, एचपीवी डीएनए टेस्ट इत्यादि करवाने से शुरुआती चरण में ही वो पकड़ में आ सकता है। फिर भी सामाजिक झिझक और जानकारी की कमी के कारण ये कैंसर महिलाओं में दूसरे नंबर पर आता है। इन संघर्षों का भावनात्मक असर भी होता है। ये संघर्ष सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन के रिश्तों को भी प्रभावित करते हैं और महिलाएं इस दर्द को भी चुपचाप सह जाती हैं। तो अब तक हमने जाना कि इस चुपचाप संघर्ष के कारण क्या है। नंबर एक,

0: समाज में लज्जा और शर्म की सोच। नंबर दो, सही शिक्षा और जागरूकता की कमी। नंबर तीन, फैमिली और समाज की सपोर्ट की कमी। चौथा, औरतों को और उनकी आवाज को महत्व ना मिलना। लेकिन हमें एक सच्चाई समझनी होगी, स्वास्थ्य कोई शर्म की बात नहीं है, ये हर व्यक्ति का अधिकार है, इसलिए इस चुप्पी को तोड़ना होगा। महिलाएं स्वस्थ होंगी तो उनके परिवार भी स्वस्थ होंगे, इसलिए इस खामोशी को तोड़ने की शुरुआत जागरूकता से करनी होगी। महिलाओं को के लिए अपने शरीर को समझना, लक्षणों को पहचानना और समय रहते मदद लेना बेहद जरूरी है। उन्हें ये समझना होगा कि पीरियड्स, प्रजनन, मीनोपॉज इत्यादि नेचुरल प्रक्रियाएं हैं और ये कोई शर्म की बात नहीं है। हमें ऐसा समाज बनाना होगा जहां माँ और बेटी खुलकर स्वास्थ्य के बारे में बात कर सकें, नियमित जांच को सामान्य माना जाए, ना कि डरावना। इसके लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा। सर्वप्रथम परिवार और मित्रों को उन्हें सपोर्ट देनी होगी, मीडिया को भी जागरूकता फैलाने की भूमिका निभानी होगी, स्कूल्स में हेल्थ एजुकेशन के सही तरीके शामिल करने होंगे, मिथ्स को खत्म करके महिलाओं को अपनी बात रखने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। हर बातचीत, हर जागरूकता, हर समर्थन हमें इस चुप्पी को तोड़ने की के एक कदम करीब ले जाता है और लाखों महिलाओं के जीवन प्रदान किया जा सकता है। हमें ये सोच बदलनी होगी कि मजबूत होना चुप रहना नहीं है, मजबूत होना मतलब है चुप्पी तोड़ना, मदद मांगना और एक दूसरे का सहारा बनना। आइए शर्म और टैबू जैसे शब्दों की जगह जागरूकता और देखभाल को अपनाएं। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि इंडियन कैंसर सोसाइटी लोगों में कैंसर्स में जागरूकता तो फैलाने का कार्य करता ही है, कैंसर पेशेंट्स और उनके केयर गिवर्स को इमोशनल सपोर्ट देने और उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने का कार्य भी करता है। इंडियन कैंसर सोसाइटी का एक कैंसर डिटेक्शन सेंटर भी है जहां सभी लोग अपनी स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। आजकल ये सेवा निशुल्क हो रही है। यहाँ का एड्रेस है 4243 बाबर रोड, बंगाली मार्केट, न्यू दिल्ली। यहाँ का समय प्रति सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक होता है। हर शुक्रवार हमारा एक प्रोग्राम जूम और यूट्यूब पर फ्राइडेज विद श्रेनिक भी होता है, उससे जुड़िए, आप बहुत जागरूक होइए। इंडियन कैंसर सोसाइटी की अपनी एक ऐप भी है, राइज अगेंस्ट कैंसर, इसे लोड करें अपने अपने फोन्स में और कैंसर के लक्षण, कारण और बचाव के बारे में भी जानें। अंत में मैं इतना कहूंगी, कोई भी महिला खामोश संघर्ष ना करे, खुलकर बोले और स्वास्थ्य में सशक्त बने। आओ मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहां खामोशी की जगह संवाद हो, डर की जगह ज्ञान हो और भेदभाव की जगह सहानुभूति हो। थैंक्स।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।

0: आकाशवाणी।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: जी हाँ दोस्तों, दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक गुरुवार से रविवार आप सुनते हैं प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मेरा वाला नहीं, आप वाला सॉन्ग। बहरहाल आप अपनी फरमाइश हमें इसमें भेजते हैं और हम उन फरमाइशों को प्ले करते हैं। जैसे कि अब हम शुरू करने जा रहे हैं, पहली फरमाइश जिसे भेजी है किसने अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन पहले नंबर बता देता हूं। 9868107070 हमारा जी हाँ व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं, 9868107070। और पहला गीत है तुम बिन फिल्म का, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, और इसकी फरमाइश हमें भेजी है पंकज ने अमरावती महाराष्ट्र से।

जी हाँ दोस्तों, अगर आपके दिल से भी यही निकल रहा है मोहब्बत मोहब्बत, आप किसी से भी इंतहा मोहब्बत करते हैं और अपने दिल की बात पहुंचाना चाहते हैं गीतों के माध्यम से, तो आप हमें अपनी फरमाइश भेज सकते हैं 9868107070 पर। जी हाँ, 9868107070 हमारा नंबर, जिस पर आप अपनी फरमाइश हमें गीत के बोल लिखकर भेज सकते हैं और बता सकते हैं किसको आप ये गीत समर्पित कर रहे हैं। जैसे कि अगला गीत जो समर्पित किया है वो है मनमोहन सिंह ने, यूपी रामपुर जिले के मंडवा हसनपुर गांव से, और ये अपनी बीवी सोनम को एक गीत समर्पित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर जी ये गीत बजा दीजिए मेरी बीवी के लिए। तो ये रहा मनमोहन जी आपकी दिल से निकलती हुई आवाज से, वो सदा आपकी पत्नी के लिए सोनम जी के लिए।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
4: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार

0: और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कोयल सी तेरी बोली,
5: आए हाय,
4: तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
6: जी हाँ, अगर आप भी अपनी फरमाइश के गीत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं 9868107070 पर। जी हाँ, 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप अपनी फरमाइश भेज सकते हैं और किसी को भी कोई भी गीत समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग और ये प्रोग्राम चलेगा ठीक 2 बजे तक। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव, और अगली फरमाइश हम पूरी करने जा रहे हैं, ये हैं जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु, और ये सुनना चाहते हैं ये वाला गीत फिल्म।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग, जो चलता है 1 बजे से 2 बजे तक। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव। और अगली गीत की फरमाइश जो हम पूरी करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है मनिका प्रधान ने नामची सिक्किम से, और ये सुनना चाहती है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मूवी से तुम आए तो हवाओं में। अगर दोस्तों आप भी इनकी तरह अपनी फरमाइश हमें भेजना चाहते हैं तो 9868107070 पर आप अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। जी हाँ, 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग।

दोस्तों, आकाशवाणी एफएम रेनबो का प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग में अब हम फरमाइश पूरी करने जा रहे हैं किशन वजनानी, नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से इन्होंने भेजी है हमें ये फरमाइश। और ये गीत है किस फिल्म का, ये मैंने दिल तुझको दिया, थोड़ा सा प्यार हुआ है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जी हाँ दोस्तों, दिल से यही आवाज निकल रही है कंचन की, सोनिया विहार दिल्ली से, जो उनके साथ हैं श्वेता यश भी हैं और ये सुनना चाहती हैं ये फिल्म है दिल है तुम्हारा का, ये गीत कसम खा के गाओ। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है।

जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो दिल खोल कर बताइए कि कितनी मोहब्बत आप उनसे करते हैं, क्योंकि जब आप अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे, और जब रिश्ते मजबूत होंगे तो आप लोग प्यार से रहेंगे और ईश्वर को भी धन्यवाद देंगे, और ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देते रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला है ना, जब साथ होता है ना तो बस सारी मुश्किलें अपने आप ही दूर हो जाती हैं। और यही गीत है सिर्फ तुम का, सुनना चाहते हैं, बहुत दूर से रिक्वेस्ट किया है, नॉर्थ ईस्ट आसाम से, नागालैंड बॉर्डर से सुनील फांगचो ने। तो ये रहा गीत उनकी फरमाइश का, आकाशवाणी FM रेनबो पर। मैं हूं ऐसा और यानी संतोष राव।

0: जी हाँ दोस्तों, ऊपर वाला सबके साथ रहे यही दुआ हम मांगते हैं। और आज का आखिरी गीत हम प्ले करने जा रहे हैं और ये इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है रायबरेली से रंजीत मस्ताना ने। तो आप आनंद लीजिए इस गीत का और इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो, क्योंकि बहुत प्यारा प्रोग्राम आने वाला है। शालिनी लेकर आ रही है तो आप जरूर सुनिएगा।
1: मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
2: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होंठों को छूकर।

0: welcome to Akashwani Rainbow 102.6. You are with me, Shalini, on Ashiana. Well, dears, Census 2027 is the talk of the town, country and Akashwani Rainbow as well. Why? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए अब से कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले हमने इस टॉपिक पर बात करी थी और आज एक बार फिर से कुछ अपडेट्स के साथ एक बार फिर से यहाँ पर हाजिर हैं. एंड टू गाइड अस ऑन द सेम वी हैव थ्री स्पेशल गेस्ट्स हियर. सबसे पहले हमारे गेस्ट हैं, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं. चैतन्य प्रसाद, IAS, DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट. आपका स्वागत है. इसके साथ ही हमारे साथ हैं रंजना देसवाल, IAS, DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल. और साथ में हैं रेजी बी, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस, दिल्ली. आपका इस कड़कती धूप, कड़कती गर्मी में ठंडा ठंडा कूल कूल स्वागत है, क्योंकि मुझे लगता है वार्म वेलकम तो काम नहीं करेगा.
1: नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच.
2: नमस्कार
0: जी. तो कहाँ से शुरुआत करें? मुझे लगता है कि एक ब्रीफ से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले भी इस टॉपिक पर चर्चा की है. तो थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए हमें कि किस तरह ये पूरा प्रोसेस है और कितना टाइम लगने वाला है और कब से इसकी शुरुआत हुई. जो लोग पहले नहीं सुन पाए वो अब सुन पाएंगे जी.
3: जो सेंसस का फर्स्ट फेज है, सबसे पहले मैं बताता हूँ, सेंसस दो फेज में किया जाता है. जो फर्स्ट फेज है अभी जो चल रहा है NDMC एरिया में, अभी जो चल रहा है, सेकंड फेज है पूरा देश में एक ही महीने में चलता है, दैट इज द मंथ ऑफ फरवरी 2027 में किया जाएगा. तो फर्स्ट फेज है जो मकान सूचीकरण का फेज होता है. तो मकान सूचीकरण में इंपॉर्टेंट है, हमने 33 क्वेश्चंस पूछे जाएगा. बेसिकली सारा क्वेश्चंस है रिलेटेड टू हाउस, जो हाउस का जो फ्लोर हो गया, वॉल हो गया, ये सारा चीज है इसका रिगार्डिंग है. हाउस होल्ड अमिनिटीज है, हाउस होल्ड असेट्स है, इसका रिगार्डिंग पूछा जाएगा. इसमें ब्रॉड कैटेगरीज है, SC ST और अदर्स है, इसका रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएगा.
0: ठीक
3: है. तो अभी हमारा जो MCD एरिया है, जो नई दिल्ली का, सॉरी दिल्ली गवर्नमेंट का, उसमें जो 12 डिस्ट्रिक्टों में अभी एक जो फर्स्ट फेज HLO फेज का काम चली रहे, तो ये काम है 14 जून तक चले जाए, खत्म हो जाएगा. उससे पहले हमको ये सारा जो दिल्ली का 12 डिस्ट्रिक्ट का सभी घरों का मकान सूचीकरण का काम कंप्लीट करना है.
0: ठीक है. मैं आपसे पूछना चाहूंगी अब रंजना जी कि ये सारा फेज जो है, जो फर्स्ट फेज है हमारा, वो सभी स्टेट्स के लिए उसकी ड्यूरेशन सेम है या अलग अलग टाइम है उसके लिए?
2: ये सभी के लिए सेम है.

0: सिटीज की भी बात करें,
1: वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली, तो हमारे यहाँ पे ये 16 मई से लेके 14 जून तक है. अभी एनुमरेटर्स हाउस टू हाउस जा रहे हैं और वो सभी का ये सेंसस डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. तो मेरा तो अनुरोध है पब्लिक से थ्रू योर दिस मीडियम कि सब पार्टिसिपेट करें इसमें. ये बहुत जरूरी है इसको बताना कि पॉलिसी मेकिंग के लिए ये सबसे एक आवश्यक टूल है हमारे लिए. सो एवरीबॉडी शुड पार्टिसिपेट इन इट होल हार्टेडली. जो एन्यूमरेटर्स हैं दे आर ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सो आईडी का कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड ही इज ऑल्सो डूइंग एडिशनल ड्यूटी. वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, अपना पूरा दिन गवर्नमेंट ड्यूटी करके उसके बाद आता है आपके घर में. सो वी आर गेटिंग कंप्लेन्ट्स दैट पीपल आर नॉट कोऑपरेटिंग. सो आई रिक्वेस्ट अगेन, सभी से अनुरोध करना चाहते हैं कि सब इसमें पार्टिसिपेट करें.
0: जी बिल्कुल.
1: और इसकी आवश्यकता का तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट हैज बीन टाइम एंड अगेन टोल्ड टू पीपल कि क्यों हम ये सब कर रहे हैं. सारी जो हमारी पॉलिसीज बनती हैं, आपको सड़कें चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, वो सब इसी के थ्रू होता है.
0: व्हेन
1: वी कम टू दिस डेटा.
0: जी जी जी. और थोड़ी सी डांट लगाइए, बिल्कुल बहुत जरूरी है. मुझे लगता है कभी कभी डांटना भी हमारे लिए फायदेमंद होता है. जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
2: जो पब्लिक का कोऑपरेशन है बहुत ही आवश्यक है, बिकॉज ये पब्लिक का कोऑपरेशन का बिना ये काम पूरी नहीं हो पाएगा. तो जो हमारा ये कहना है, जो दिल्ली में भी कई जगह से हमारे को ये खबर मिला हुआ है, कई जो मकान वाले के अपना टेनेंट का गिनती करना जो आवश्यक नहीं समझ रहे, तो लेकिन सेंसस का जो डेफिनेशन है, सेंसस का जो प्रक्रिया है, उसी हिसाब से जो टेनेंट्स है उसको अगर सामान्य तरफ से दिल्ली में रहने वाले टैलेंट्स हैं उनको अवश्य उनको इसमें सेंसस में गिनती करवाना जरूरी है.
0: जी,
2: तो कई स्टेट में भी जो कई स्टेट से जो माइग्रेंट वर्कर्स है दे एक्चुअली वो लोग भी ये समझ रहे हैं हम अपना स्टेट में अपना गिनती करवाने के प्रयास कर रहे हैं. बट जो हमारा जो सेंसस का जो जो डेफिनेशंस के हिसाब से जो जिस स्थल पे वो रहता है, सामान्य रूप से रहता है, उस जगह पे उनका गिनती करना जरूरी होता है. सो ये सारा चीज है जो अगर टेनेंट्स जो मकान मालिक हो गया या किरायादार हो गया, ये दोनों अपना तरफ से इसको अच्छी तरह समझ के पूरी तरह से कोऑपरेशन देने का सहयोग करने का अनुरोध करूं.
0: जी, मेरे पास इससे रिलेटेड और भी सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं अपने लिसनर्स से कहना चाहूंगी कि अगर आपके कोई सवाल हैं सेंसस 2027 को लेकर तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं. 9868107070 है नंबर, 9868107070. कार्यक्रम चल रहा है आशियाना और हम बात कर रहे हैं सेंसस 2027 की. जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी रंजना जी कि ये सारा जो प्रोसेस है, लोगों को लगता है कि ठीक है अगर झूठी इन्फॉर्मेशन दे देंगे या कुछ भी चलेगा, नहीं देंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा. क्या ऐसा है, उसके लिए क्या कुछ तैयारी की गई है ताकि लोग झूठ ना बोल पाए, गलत इन्फॉर्मेशन ना दे पाए?
1: सबको एक सत्य बोलना चाहिए.
0: जी.
1: ये तो सभी शुरू से सिखाया जाता है. तो इसमें तो यू आर गिविंग इन्फॉर्मेशन टू गवर्नमेंट, सो देर आर पेनल्टीज अंडर द एक्ट. अगर सेक्शन 8 में आपको ये इन्फॉर्मेशन हमारे एन्यूमरेटर्स को देना कंपलसरी है,
0: राइट,
1: और सेक्शन 11 में इसका सेक्शन 11 ऑफ द सेंसस एक्ट 1948 में ये प्रावधान है कि अगर आप गलत जानकारी देंगे और तो हम उसमें आपको पनिशमेंट कर सकते हैं, 3 साल तक इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है. एंड इन एज अ फर्स्ट पनिशमेंट 1000 रुपीज इमिडिएटली फाइन करेंगे.
0: जी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी रेजी जी कि ये सारे जो टाइमिंग है पोर्टल की, पोर्टल सबमिशन, फॉर्म सबमिशन की जो टाइमिंग है वो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक कितने बजे तक है और क्या प्रोसीजर है सीक्वेंस में, अगर थोड़ा सा आप हमें समझा पाए तो?
2: देखिए, इसमें पोर्टल में जो हमारा पूरा डिजिटल सेंसस हो रहा है, पूरा दिल्ली में भी हम डिजिटल तरीके से ही सेंसस करवा रहे हैं, तो उसमें जो एन्यूमरेटर है अपना मोबाइल ऐप के सहारे पे अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. इसके बाद जो वो जो अपना अगर इंटरनेट का अवेलेबिलिटी के हिसाब से हर 5 घर 5 घर 10 घर के बाद वो सिंक कर सकता है. जैसे सिंक करेगा हमारा डाटा सर्वर पे सीधा चला जाएगा.
0: जी.
2: तो सिंक करने का आवश्यकता ये भी है, अगर मोबाइल में बाद में कुछ तकनीकी खराब हो गया या लॉस्ट हो गया तो हमारा डाटा सर्वर में सेव रहेगा.
0: जी.
2: तो इसलिए सभी एन्यूमरेटर है को उनको डायरेक्शन दिया गया है जो एवरी 5 घर 10 घर है

0: उसके बाद सिंक करते रहेंगे एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी।
1: बिल्कुल,
0: तो इसमें कोई भी टाइम में वो सिंक कर सकता है, 24 आवर्स के लिए सर्वर रनिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी वो सिंक कर सकता है अपना
1: डाटा। ठीक है चैतन्य जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, आपसे पूछूंगी कि बात यहाँ पर इंटरनेट और डिजिटल हो रही है सारी बातें, तो मैं जानना चाहूंगी कि जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए इंटरनेट, ये जो पोर्टल है सारा, ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है क्या?
2: मैम ये ना एक ऐप है, ऐप में एक्चुअली फर्स्टली व्हेन एवर द एन्यूमरेटर्स दे गो होम, माय सिंसियर रिक्वेस्ट इज फॉर ऑल द पीपल, सी इट्स वेरी सनी डे,
1: बहुत ज्यादा गर्मी
2: है एंड लू चल रहा है, फर्स्टली टू वेलकम देम बिकॉज वी नीड टू अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स दैट दे आर डूइंग। जिन जिन लोग सेल्फ एन्यूमरेशन कर लिया वो बस सेल्फ एन्यूमरेशन की आईडी देने पे हो जाएगी मैम, वो आईडी में बाद में एन्यूमरेटर अपने लॉगिन से वो आईडी डाल के वो चेक करेंगे। पहले फेज में हमारा सिर्फ हाउस लिस्टिंग का ही काम चल रहा है,
1: ठीक है,
2: मतलब घर का मतलब बेसिक कंडीशन कैसा है, हमारा हाउ इज द सीवरेज सिस्टम, पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कैसा है, छत कैसा है, वेदर इट इज थ्रैश्ड और दीज थिंग्स ना। सो ये ऐप से ही काम चलेगा, पांच एज डॉक्टर रेजी एज इन्फॉर्म्ड पांच बार, आई मीन लाइक ना अगर हर पांच घर में वी आर एनकरेजिंग द एन्यूमरेटर्स टू सिंक द डेटा, जब सिंक कर रहे हैं उस वक्त इंटरनेट की जरूरत होगी, so that will be uploaded on the portal,
1: not all the time. रंजना जी मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि जो HLO मोबाइल एप्लीकेशन है हमारी, वो मोबाइल में जैसा काम करती है सेम डेस्कटॉप में भी एप्लीकेशन ये वैसा ही काम करती है हमारी ऐप?
3: ऐप तो दोनों जगह काम करेगी,
1: दोनों जगह सेम काम
3: yes,
1: करेगी।
3: इट्स अ टेक्नोलॉजिकल ऐप, बट सिंस एन्यूमरेटर्स आर मूविंग फ्रॉम हाउस टू हाउस, तो इसीलिए ये मोबाइल ऐप बनाई, दिस इज द फर्स्ट टाइम we are using a digital census,
1: right,
3: everything is real time and it's being stored and collected digitally, so the information will be available readily.
1: And what about people who are not comfortable with this thing, internet or digital
3: see thing? Self enumeration drive ek chalaya tha pehle ek mahina pehle jisme bahut sare logon ne very encouraging figures लोगों ने अपना डेटा उसमें फीड कर दिया ऐप में,
1: राइट,
3: उससे हमें क्या सुविधा हुई कि हम जब एन्यूमरेटर जा रहा है वहां पे वो अपना कोड बताएंगे, इसमें जो सेल्फ एन्यूमरेशन कोड उनको मिला अपना डेटा भरने के बाद में जिस जिसने भर दिया
1: जी,
3: तो उससे वो इन्फॉर्मेशन उसको क्रॉस चेक करेंगे और वो जल्दी हो जाएगा काम,
1: ठीक है,
3: अदरवाइज जिसने नहीं भर पाए हैं वो एन्यूमरेटर्स अब अपना काम कर ही रहे।
1: जी रेजी जी, अगर मान लीजिए ये फॉर्म फिल करने के बाद जो उनको आईडी मिलती है जिसे आप SEID कहते हैं, वो किस तरह से मिलती है? दो तरह से मिलती है मुझे लगता है, शायद एक मैसेज के थ्रू मिलती है, किस तरह से
0: एक ईमेल के थ्रू मिलता है, एक मैसेज के थ्रू मिलता है,
1: राइट,
0: तो इवन उनका जो एट द टाइम ऑफ फिनिशिंग द टाइम वो स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो जाता है उनका, वो फोटो ले सकता है। तो इसके अलावा तो वो लोग को दो तरीके से मिल जाएगा, एक ईमेल पे मिल जाएगा, एक SMS के तरीके से मिल जाएगा,
1: ठीक है। और मान लीजिए अगर मिस कर दिया है किसी ने किसी वजह
0: तो
1: से,
0: मिस कर दिया तो भी उन्होंने दोबारा पोर्टल में जाके अपना मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूज करके लॉग इन करेगा तो उससे SEID मिल जाएगा।
1: ऑलराइट, कमिंग टू यू, आप बताइए चैतन्य जी कि ये मोबाइल जो एन्यूमरेशन है हमारा सेल्फ एन्यूमरेशन के बाद, वहां जब पहुंचते हैं हमारे एन्यूमरेटर्स जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं वहां पर विजिट करते हैं घर पर, तो फिर क्या प्रोसेस होता है उसके बाद, क्योंकि वो सारा प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है?
2: मैम सबसे पहले घर पहुंचने के बाद एन्यूमरेटर ये पूछते हैं कि आपके सेल्फ एन्यूमरेशन हुआ नहीं हुआ,
1: ठीक है,
2: अगर हो, अगर कोई भी मतलब घर में परिवारजन सेल्फ एन्यूमरेशन कर लिए उनके आईडी प्रोवाइड करने पे मतलब वो बस नोट डाउन करके चले जाएंगे एंड बाद में डिटेल्स वेरीफाई कराया जाएगी। एक सवाल हमसे भी ये पूछा गया कि सर मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन दिल्ली, सो अगर जिस टाइम हमारा मान लीजिए सेल्फ एन्यूमरेशन हो गई और जिस वक्त एन्यूमरेटर घर पहुंचे घर लॉक्ड मिले तब कैसे करना है? देन वी हैव गिवन अ सजेशन, मैम आप पुराने सी इन द 90s हाउ इट हैपेंस, अगर जब भी कोई वैक्सीनेशन के लिए कुछ आते हैं विद पेंसिल दे यूज्ड टू राइट इट ऑन द डोर एंड दे यूज्ड टू गो, सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग रादर वाज जो लोग सेल्फ एन्यूमरेशन कर लिए एक छोटा सा ना दरवाजे पे चिपका के चले जाइए ताकि अगर जब भी एन्यूमरेटर आएंगे हम उनका मदद कर सकते, नहीं तो वरना ये लॉक्ड की तरह दिखा के एन्यूमरेटर को फिर से यही गर्मी में वापस विजिट करना पड़ेगा, विच कैन बी अवॉइडेड,
1: ठीक है। और अब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी रंजना जी, लेकिन उससे पहले मैं अपने लिसनर से बताना चाहूंगी कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं सेंसस 2027 को लेकर तो आशियाना जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें आप हमसे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं मैसेज के थ्रू 9868107070 पे आप हमें मैसेज करिए और बताइए आपका जो भी सवाल हो। चलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जो CMMS जो हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम है, सेंसस का मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, वो किस तरह से काम करता है?
3: ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस के साइट में मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है. तो इसमें जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एन्यूमरेटर्स का, एन्यूमरेटर्स जो जा जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और जो सेल्फ एन्यूमरेशन का डेटा है वो सारा इसमें अवेलेबल है हमारे पास में. एंड वी आर एबल टू सी कि कितने लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है या किस किसका डेटा हमारे पास आ गया है.
1: ठीक है.
3: So this will then form the mother data for all other whatever policies we are going to make.
1: ठीक है. तो ये जो सेंटर है सारी सारी चीजों का, जहां पर सारा डेटा कलेक्ट होता है. ठीक है. और भी बातें हैं हमारे पास करने के लिए, और सेंसस 2027 से लेकर सारे सवाल हमारे पास, हम जानेंगे. आपके अगर कोई सवाल है उसके जवाब भी हमारे पास यहां मिलेंगे, हमारे गेस्ट आपको उसका जवाब देंगे. बात कर रहे हैं हम सेंसस 2027 की आशियाना में, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर. आप हैं मेरे साथ शालिनी, और हमारे साथ तीन स्पेशल गेस्ट हैं आज. चैतन्य प्रसाद है हमारे साथ, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट, और साथ में है रंजना देस वाल, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, एंड रेजी बी, डेप्यूटी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस दिल्ली. ठीक है. तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद.

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।

0: My dears, you are on Akashwani Rainbow 102.6 with me, Shalini, on Ashiana. We are talking about Census 2027. जी, और हमारे साथ यहाँ पर आज तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं. चैतन्य प्रसाद है हमारे साथ, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट. साथ में है रंजना देसवाल, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, एंड RGP डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस दिल्ली. हमने अभी बहुत सारी बातें की और इससे पहले हम और चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं अपने लिसनर से कहना चाहूंगी, अगर आपके कोई भी सवाल हैं सेंसस से जुड़े हुए, जनगणना से जुड़े हुए 2027 की, तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं. 9868107070 है नंबर, 9868107070. जी रेजी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये सारा जो डेटा है जो कलेक्ट हो रहा है, अगर पब्लिक उसका एक्सेस चाहे तो किस तरह से ले सकती है?
1: मैडम, पहली बात है, आपको बताना चाहता है सेंसस एक्ट के अंतर्गत इंडिविजुअल डाटा का एक्सेस किसी को नहीं दिया जाएगा. इवन सेंसस एक्ट ये इंश्योर करता है जो इंडिविजुअल डाटा है, किसी भी इंडिविजुअल डाटा है, हम किसी को शेयर नहीं करेंगे. इवन द कोर्ट जो इंडियन एविडेंस का उसके अंदर भी मांगेगा तो हम उसको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा. बिकॉज सेंसस एक्ट उसका प्रोटेक्शन दे रहा है, पब्लिक को अश्योरेंस दे रहा है, इस भरोसे पे हम जो ठीक तरीके से डेटा कलेक्ट कर पाए. लेकिन इसका अग्रीगेट जो फॉर्म है, मतलब टोटल कितना मेल्स है, टोटल कितना फीमेल्स है, कितना घर पे इलेक्ट्रिसिटी है, कितना घर पे टॉयलेट फैसिलिटीज है, दिस जो टेबल्स है, हम स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट का फॉर्म है, हम उसको पब्लिश करेंगे. ये हमारा पॉलिसी प्लानिंग पर्पस के लिए, कई तरीके से लोकल गवर्नमेंट्स हो गया, स्टेट गवर्नमेंट्स हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो गया, ये अपना पॉलिसी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है.
0: ठीक है चैतन्य जी, आप बताएं कि क्या, क्योंकि हर कोई इससे अवेयर नहीं है, बहुत सारे लोग जो है इंटरनेट का यूज थोड़ा जानते हैं थोड़ा नहीं जानते हैं, रूरल एरियाज में तो बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए इसको एक्सेस कर पाना. तो क्या अगर वो जानना चाहें तो कोई ट्यूटोरियल या कोई एक्सप्लेनर वीडियो अवेलेबल है साइट पर हमारे सेंसस?
2: यस मैम, हम काफी सारे IEC प्रोग्राम्स कर रहे हैं, आई मीन लोग तक पहुंचाने के लिए. एक तो इन्यूमरेटर आपके घर पे आ रहे हैं, मेनली ये जो इंटरनेट की एंड ये टेक्नोलॉजिकल यूज की सवाल आई है, दैट इज मोर एट द एंड ऑफ इन्यूमरेटर्स. उनके लिए हम एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दिया गया है, एंड वी आर ऑल्सो चूजिंग इन्यूमरेटर्स ऑन द बेस ऑफ देयर स्किल फ्रॉम द पूल दैट इज गिवन.
0: ठीक है,
2: बाकी लोगों को हम रिजर्व में रखे हुए, एंड मेनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिटीजंस, जिनका मतलब टेक्नोलॉजिकली दे आर कंफर्टेबल, वी हैव एनकरेज देम रादर टू फिल द ऑप्शन थ्रू सेल्फ एन्यूमरेशन. जिनका नहीं है, आई मीन

0: एनुमरेटर वैसे ही उनके घर तक आएंगे, उस
1: और वो
0: टाइम बस
1: करेंगे उस काम
0: थ्रू वेरबली मतलब इन्फॉर्मेशन पूछ के
1: जी
0: बताएंगे। बट इसमें दोनों तरफ की है, एक जो एनुमरेटर जो सवाल पूछ रहे हैं उनका सही जवाब सिटीजन्स को देना है, एट द सेम टाइम जो सिटीजन्स जो भी जवाब दे रहे हैं एनुमरेटर को भी वो सही तरह से ही फिल करना है।
1: नहीं तो
0: इट इज ऑन बोथ द वेज।
1: हम यूजुअली
0: सिटीजन को
1: आई मीन
0: लाइक ना कि वी पुट द ओनर्स ऑन देम बट द ओनर्स इज आल्सो ऑन द एनुमरेटर्स, जो बोले वही लिखे कुछ अपने हिसाब से ना लिखे।
1: ट्रू। आपसे पूछना चाहूंगी मैं रंजना जी, क्या सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कोई टोल फ्री नंबर है जिस पर अगर कोई कंप्लेंट हो या कोई किसी तरह की क्वेरी हो आप बताएं, या आप कोई भी बता सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। जी
2: देयर इज टोल फ्री नंबर 1855 इज द नंबर। सो वो कोई भी लोकेशन से वो डायल करेगा तो वो लोकेशन से जो जियो रेफरेंसिंग किया हुआ है उस पर्टिकुलर स्टेट का डीसीओ मतलब डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन का कॉल सेंटर में वो कॉल पहुंच जाएगा, उधर से पब्लिक रिलेटेड कोई भी जो सवाल का जवाब मिल जाएगा।
1: ठीक है, और क्या कोई वेबसाइट है, लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है डिटेल में, बताएं हमें कि क्या वेबसाइट है, उसको वो वहां पर जाकर लॉग इन कर सकते हैं और सारी डिटेल्स किस तरह से प्रोसेस शुरू होगा।
2: मैडम पब्लिक के लिए कोई ऐसा वेबसाइट है जो लॉग इन करने का सुविधा नहीं है, बट एक्चुअली सेंसस india.gov.in है हमारे जो ORG का ऑफिस ऑफ रजिस्टर जनरल इंडिया का वेबसाइट है, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। दूसरा है हमारा CMMS पोर्टल का एड्रेस यही है census.gov.in है
1: जी,
2: इसी पे मिल जाएगा। सेल्फ एनुमरेशन का जोड़ा हुआ सारा जानकारी है sc.census.gov.in है
1: जी,
2: उसमें मिल जाएगा।
1: चलिए बहुत शुक्रिया, आगे हम जारी रखेंगे अपनी चर्चा को, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अपने लिसनर से कहना चाहेंगे कोई भी सवाल हो तो हम तक भेज दीजिए। आप 9868107070 है हमारा नंबर और मेरा नाम है शालिनी। यहाँ पर जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आते हैं लौट कर करेंगे ढेर सारी चर्चा। और आपको बता दें कि हमारे साथ तीन खास मेहमान है आज स्टूडियो में बात करने के लिए सेंसस 2027 को लेकर, यानी कि जनगणना 2027 को लेकर। हमारे गेस्ट के नाम है चैतन्य प्रसाद, है हमारे साथ IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट, साथ में है रंजना देसवाल IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, और साथ में है रिजी बी डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस दिल्ली। इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं एक बार फिर।

योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

वेलकम बैक डियर्स, यू आर ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 विद मी शालिनी और शो चल रहा है आशियाना। आशियाना में आज हम बात कर रहे हैं सेंसस 2027 को लेकर, यानी कि जनगणना 2027 को लेकर, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, काफी पहले हो चुकी है और ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में वक्त लगेगा और बहुत सारी मेहनत लगने वाली है और आपका सहयोग भी हमें इसमें चाहिए। हमारे साथ यहाँ इस टॉपिक पर, इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद है स्टूडियो में हमारे तीन खास मेहमान। चैतन्य प्रसाद हैं, साथ में IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट, और साथ में है रंजना देशवाल IAS

0: DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, और साथ में हैं रेजीपी डेप्यूटी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस दिल्ली। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को। मैं आपसे पूछना चाहूंगी चैतन्य जी कि मान लीजिए किसी ने 15 डे की जो हमारी ये सेल्फ एन्यूमरेशन की जो विंडो है उसको वो नहीं कंप्लीट कर पाए उस प्रोसेस को, तो फिर क्या उनके लिए ऑप्शन है?
1: मैम, उनके लिए जो एन्यूमरेटर्स एनलिस्टेड हाउसिंग ब्लॉक्स का, वो आप उनके घर विजिट करेंगे, वही सवाल जो भी हाउसिंग के बारे में है वो पूछे जाएंगे एंड उनसे पर्सनली मिलके वो शीट फिल की जाएगी। एंड अगर हाउस लॉक मिला तो 3 बार विजिट होगी।
0: ठीक है,
1: तो सारे सिटीजन को ये भी ध्यान रखना है कि मतलब इन्यूमरेटर उनके घर आएंगे।
0: जी, मैं इससे जुड़ा एक आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जो हाउस लॉक वाली सिचुएशन है ये हो ही ना, इसको अवॉइड करने के लिए क्या कुछ है हमारे पास ऐसा रास्ता?
1: यूजुअली वी आर एनकरेजिंग द इन्यूमरेटर्स टू स्टार्ट द वर्क अर्ली इन द डे टाइम, वन टू रीच द पीपल ताकि लोग तक पहुंचे, एंड दूसरा टू बीट द हीट वेव ऑल्सो।
0: ठीक है,
1: एंड डू इट इन सम टाइम लेट इन द इवनिंग्स एंड यूटिलाइज द वीकेंड्स फॉर दिस पर्पस।
0: ट्रू, फाइन। लेकिन क्या कोई नोटिफिकेशन उससे पहले भेजा जा सकता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि एन्यूमरेटर्स आने वाले हैं हमारे घर पे, तो हमें जाना नहीं चाहिए?
1: मोस्टली एन्यूमरेटर्स मैम वी हैव चूजन फ्रॉम लोकली ओनली।
0: अच्छा,
1: तो दे आर डेजिग्नेटिंग सम डिसेंट्रलाइज्ड मींस ओनली जिस तरह से, बिकॉज यूजुअली उधर का ही टीचर्स, स्कूल के टीचर्स ना, जो इलाके में रहते हैं वही एन्यूमरेटर की काम कर रहे हैं।
0: राइट,
1: सो सम वे मैकेनिज्म इज डिजाइन्ड एट लोकल लेवल ओनली टू लेट नो द पीपल और द इन चार्ज ऑफ RWA, वी आर एनकरेजिंग टू यूटिलाइज दोज मींस रादर देन सेंट्रली डिजाइनिंग समथिंग व्हिच कैन नॉट बी फीजिबल।
0: ठीक है, रंजना जी आप बताएं कि अगर किसी तरह का कोई इश्यू आता है सारे प्रोसीजर में, मान लीजिए फॉर्म फिल करते वक्त या एन्यूमरेटर्स वहां पर हैं लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कोई समस्या आ रही है, तो उसकी कहां पर शिकायत कर सकते हैं या अपनी बात कहां तक पहुंचा सकते हैं, कैसे?
2: हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस कमिटी बनी हुई है सेंसस के लिए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ADM, और वो वहां आके कंप्लेन कर सकते हैं कि अपना जो भी कोई इश्यू है।
0: ठीक है, रेजी जी आप बताएं कि इतनी सारी अलग अलग, हमारा जो देश है वो भाषाई विविधता और बहुत तरह की विविधताओं से जो भरा हुआ है, तो ये खूबसूरती भी है लेकिन कई बार जब फील्ड वर्क किया जाता है और इतने बड़े लेवल पर किया जाता है तो बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं इसको लेकर, क्योंकि सारी लैंग्वेजेस तो सबको नहीं आती हैं, तो इसको कैसे टैकल करते हैं?
3: मैडम, ये ओल्ड इंडिया में हमारा जो सेंसस है अलग अलग लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज है उसी पे किया जाएगा।
0: ठीक है,
3: हमने जो मोबाइल ऐप डिजाइन किया है वो सारा लैंग्वेज में, अराउंड 16 लैंग्वेज में उसमें डिजाइन किया हुआ है, तो इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है उतना लैंग्वेज में प्रिंट हो जाता है। इवन जो ये सारा चीज से देखते हुए, बिकॉज ये जो मास ऑल इंडिया ऑपरेशन है, पान इंडिया ऑपरेशन है, इसको लैंग्वेज को ध्यान रखना बहुत ही जो आवश्यक है, बिकॉज पान इंडिया ऑपरेशन में जो लोकल पीपल को अगर जो आम जनता से डेटा इकट्ठा करना है
0: जी,
3: तो उसको लोकल लैंग्वेज का यूज इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसीलिए सेंसस में ये जो हर रीजन का लोकल लैंग्वेज को प्रावधान दिया जाए।
0: ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक चीज मैं और भी जानना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी चैतन्य जी की NRIs के केस में, क्योंकि यहाँ के सिटीजन हैं और बाहर भी उन्होंने सिटीजनशिप ली हुई होती है या किसी पर्पज से काम को लेकर या किसी और सिलसिले में वो कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए बाहर विदेशों में रह रहे हैं जाकर, या विदेश से कोई यहाँ भारत में आकर रह रहा है कुछ समय के लिए, उसको किस तरह से काउंट किया जाएगा सेंसस में?
1: मैम, अभी जो फेज चल रही है वो बस हाउस लिस्टिंग का फेज है, तो ये एक महीना चलेगी। उनके बाद ये सारे पॉपुलेशन इन्यूमरेशन दैट विल बी इन द सेकंड फेज इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज इन द ईयर फरवरी 2027।
0: ठीक है,
1: हाँ, उस वक्त ये सारा देखा जाएगा। रिजी जी आप इस पे ज्यादा बता सकते
0: हैं।
3: एक्चुअली सेंसस में सिटीजनशिप का कोई जो क्राइटेरिया है ही नहीं है।
0: ठीक है,
3: जो कई लोग पब्लिक का भी फियर आम लोग तक पहुंचा हुआ है, तो पब्लिक का फियर यही है, वोटर आईडी कार्ड जो वोटरशिप है वो लूज हो जाएगा सेंसस में, नाम नहीं आएगा, ऐसा इस तरीके से है, बट ऐसा कुछ इसमें इंटरलिंक कनेक्शन नहीं है।
0: ठीक है,
3: तो इसमें क्या है, कोई भी इंडिया में अगर फॉरेनर्स है उसका अगर उनको डिप्लोमेटिक स्टेटस नहीं है तो वी हैव टू काउंट देम हियर। अगर हमारा जो नागरिक है वो जो भी है वो फॉरेन कंट्री में रहता है उनका अभी जो सेंसस में गिनती नहीं होता है, तो इस हिसाब से है।
0: रंजना जी, आप माइग्रेंट पॉपुलेशन को हम कैसे डील करेंगे यहाँ पर, उनके अंदर काफी तरह के अलग अलग तरह के भय, मिथ्स जो भी कह लें आप होते हैं, तो उन क्या उनके जो वहम है उन्हें दूर करें थोड़ा सा?
2: So census is basically for the permanent residence of a place. चाहे आप टेनेंट रहे या आप हाउस ओनर हैं, जो मूलतः जितनी ज्यादातर समय जहां आप बिता रहे हैं, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, वहां पे आपका सेंसस किया जा रहा है. सो माइग्रेटिंग पॉपुलेशन, इफ यू आर सेइंग, इनफैक्ट इन दिल्ली वी हैव 5 लाख पीपल ट्रैवलिंग टू एंड फ्रो फ्रॉम दिल्ली एंड दिल्ली एनसीआर एवरी डे फॉर वर्क. सो दे आर रिजाइडिंग इन एनसीआर, वहां पे उनकी सेंसस एक्टिविटीज होंगी. और जो हमारे यहाँ लोग रह रहे हैं और ज्यादातर यहाँ रहते हैं और छुट्टियां बिताने बाहर जाते हैं 3 महीने के लिए, उनका भी सेंसस यही होगा.
0: जी बिल्कुल. चलिए, बहुत देर से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का टाइम हो गया, ले लेना चाहिए हमें. आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं आशियाना, मैं हूँ आपके साथ शालिनी और मेरे साथ यहाँ पर 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं. हम चर्चा कर रहे हैं सेंसस 2027 को लेकर, यानी कि जनगणना 2027 को लेकर. हमारे साथ हैं चैतन्य प्रसाद, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट साउथ, और साथ में है रंजना देसवाल, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल. रेजी बी है हमारे साथ, डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस दिल्ली. आपके भी कोई सवाल है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं 9868107070 पर. आते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, आपको ही मचाएगा. स्टे ट्यून्ड.

0: बिल्कुल, इसी रंगीले देश के बहुत सारे तमाम रंगों को समेट कर हम यहाँ पर लाए हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, यू विद मी शालिनी और शो चल रहा है आशियाना। और इन सारे रंगों को मिलाने की जो जद्दोजहद चल रही है ना, वो हमारे ऑफिसर्स कर रहे हैं सेंसेस 2027 में, क्योंकि यहाँ पर कोशिश है कि आपके विकास को किस तरह से आप तक पहुंचाया जाए, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप जनगणना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। हमारे साथ यहाँ पर इस विषय पर बात करने के लिए आज मौजूद हैं हमारे तीन खास मेहमान। चैतन्य प्रसाद है हमारे साथ, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट, एंड रंजना देसवाल, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। रेजी भी है हमारे साथ, डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टोरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस दिल्ली। जी, हमने बात करी अभी NRI और माइग्रेंट पॉपुलेशन की, अब हम आते हैं कि जो भी, मान लीजिए कि कोई घर का मुखिया है, जैसे कोई एक ही है जो फॉर्म फिल कर सकता है, ऐसा है क्या? मान लीजिए घर का मुखिया नहीं है वहां पर किसी भी कारण से, तो कौन ऐसा शख्स है जो उसके बाद फॉर्म फिल कर सकता है
1: सेल्फ एन्यूमरेशन के लिए?
0: जी,
1: जो सेल्फ एन्यूमरेशन के लिए कोई भी मेंबर है अपना कोई भी मोबाइल नंबर यूज करके रजिस्टर करके अपना फिल कर सकता है। ये जरूरी नहीं है हेड ऑफ द हाउस होल्ड ही ये काम करे, कोई भी जो मैच्योर्ड बंदा है तो वो कर सकता है काम। तो उसमें जो अपना मोबाइल नंबर डाल के, एक मोबाइल नंबर पे एक ही घर का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसमें एक इम्पोर्टेंट थिंग है, उनका जो लोकेशन है सैटेलाइट इमेजरी के ऊपर जो सेलेक्ट कर रहा है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर हो गया तो SCID जो इंसर्ट करेगा उस पर्टिकुलर एन्यूमरेटर SCID लेके इंसर्ट करेगा तो वो डेटा फेच कर पाएगा। अगर आपने कहीं दूर लोकेशन फिक्स कर दिया तो SCID प्रॉपरली उस HLV के अंदर फेच करना मुश्किल पड़ेगा। तो इसको ध्यान रखना जरूरी
0: जी। और मान लीजिए किसी के एक से ज्यादा घर है, ना सिर्फ भारत की बात हो रही है, बाहर विदेश में या कहीं और, फिर उस केस में क्या करेंगे हम?
1: सो एक्चुअली एक घर के लिए एक मोबाइल आईडी यूज करना है। अगर उसका एक्चुअली जो जिस घर पे वो रह रहा है उनको उस घर के लिए उन्होंने जो रजिस्टर करना है। जो अगर दूसरा उनका घर है वो किराए पे चढ़ा के रखा है तो किराएदार रजिस्टर करेंगे उसका, मतलब रजिस्ट्रेशन मतलब उसका मोबाइल नंबर डाल के वो अपना हेड ऑफ द हाउस होल्ड है, मतलब हाउस जो सेंसस हाउस है दो फिजिकल एंटिटी है, उसमें कौन यूज कर रहा है वो रजिस्टर कर सकते हैं।
0: इसमें डरने की तो कोई जरूरत नहीं, लोग बहुत सारे डर जाते हैं कि हमारी सारी प्रॉपर्टी का आ रही है। जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी चैतन्य जी कि अगर फॉर्म फिल करते हैं और कुछ कमियां रह जाती हैं उसमें फॉर्म फिल करते वक्त, तो क्या बाद में अपडेट की जा सकती हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन भी?
2: नहीं, ऑनलाइन मैम सारे कॉलम्स फिल करने के बाद ही सबमिट करने का ऑप्शन आता है।
0: ठीक है, मतलब उससे पहले आप नहीं आगे बढ़
2: सकते? मतलब आगे बढ़ नहीं सकते।
0: ऑलराइट,
2: एट द सेम टाइम जब एन्यूमरेटर आएंगे एटलीस्ट ऑन द फर्स्ट फेज ऑफ हाउस लिस्टिंग, वो तो बेसिक सवाल ही है, टॉयलेट है या नहीं, आई मीन आपका पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है नहीं, आपके घर की कंडीशन कैसा है,
0: ठीक है,
2: वो एज सच मतलब पूछ के पता लग जाएगी।
0: बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगी मैं रंजना जी कि अगर मान लीजिए, हालांकि ऐसा हमें लगता तो नहीं है और ना हो तो ही अच्छा है, लेकिन अगर कोई जो एन्यूमरेटर है वो मिसबिहेव करते हैं किसी भी कंडीशन में, या कोई ऐसी सिचुएशन बनती है इस तरह की किसी भी घर में, तो उस केस में क्या किया जाएगा, कैसे टैकल किया जाएगा उसको?
3: एक्चुअली उल्टा देखा गया है कि एन्यूमरेटर्स तो दे आर डूइंग देयर ऑफिशियल ड्यूटी,
0: यस यस,
3: इसलिए दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल, दे आर अंडर द एक्ट नॉमिनेटेड टू परफॉर्म दिस ड्यूटी।
0: जी,
3: तो मिसबिहेव जो होता है वो पब्लिक की तरफ से होता है।
0: मैं माफी चाहूंगी, मुझे इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि अगर हम एक तरफ की बात रखेंगे तो लोगों को क्वेश्चन होता है कि सिर्फ ऐसा पब्लिक ही नहीं करती, ऐसा ऑफिसर्स की तरफ से भी हो सकता है, तो जस्ट इन दैट केस
3: then you can call the police and because we have to call the police kyunki public misbehave kar rahi hai hamare enumerators ke sath,
0: theek hai
3: din ka neend kharab ho raha hai unka, isliye even though our enumerators are going at 4 PM lekin ye hai ki dopahar ki garmi wali jo abhi summer vacations ka neend kharab ho raha hai, isliye people don't want to get disturbed, whereas it is their statutory duty to give us this information।
0: जी, आप अपनी नींद खराब नहीं कर सकते, और देखिए यहाँ पर हमारे जो ऑफिसर्स हैं सेंसस को लेकर कितने वो सतर्क हैं, कितने ज्यादा वो डेडिकेटेड हैं कि वो पूरा पूरा दिन इतनी तपती हुई धूप में भटकते हैं और आपके पास आते हैं ताकि आप तक विकास को पहुंचाया जा सके। तो आप इतना तो काम कर ही सकते हैं कि उनका अच्छे से वेलकम कर लें और उनके साथ में बदमिजाजी जो है वो ना करें। और इसके अलावा मैं क्या कहूंगी, और आप ही बताएं अगर कोई ऐसा इंसिडेंट, आप कुछ कहना चाहेंगे इससे रिलेटेड?
1: देखिए इसमें क्या है, जो जो इंसिडेंस है जो भी है दोनों तरह से हो सकता है, पर इसको अवॉइड किया जा सकता है। अगर घर पे पब्लिक को भी कोई भी तरीके से शक है ये रियली सेंसस की तरफ से आया हुआ है, तो उनके लिए उनका आईडी कार्ड में क्यूआर कोड दिया हुआ है, दे कैन स्कैन एंड वेरीफाई, हमारा साइट में उनका नाम वगैरह दिखाई देगा, तो प्रॉपर है। ये सारा चीज पब्लिक को कर सकता है
0: जी।
1: तो पब्लिक से ये अनुरोध है जितना कोऑपरेट कर सकता है, बिकॉज क्लाइमेट भी हमारा बहुत अडोस चल रहा है,
0: बिल्कुल,
1: तो जितना कोऑपरेट कर सकता है, लेकिन अपना सुरक्षा भी देखिए। ये हमारा तरफ से कोई भी मोबाइल ओटीपी या आधार कार्ड का जो जांच है, कोई भी डॉक्यूमेंट का जांच है, इस तरीके से कोई भी डिमांड नहीं होगा। तो इस तरीके से कोई कर रहा है तो आप उसी को लेके कंसर्न डीएम ऑफिस है या कंसर्न चार्ज ऑफिसर है तो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, यानी कि आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबली जो है वो इस काम को करिए, क्योंकि ये आप ही के लिए किया जा रहा है। और मैं अपने लिसनर्स से कहना चाहूंगी कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो 9868107070 पर हमें पहुंचा सकते हैं। और आज आपके लिए मैं बता दूं कि इतनी सारी बातें हैं ना यहाँ पर कि हमें शायद समय कम पड़ जाए। तो आशियाना में आप सुन रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं सेंसस 2027 को लेकर, और हमारे साथ जो यहाँ पर गेस्ट हैं वो पूरी डिटेल में जानकारी आपको दे रहे हैं। हमारे साथ हैं चैतन्य प्रसाद, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट, और रंजना देसवाल हैं हमारे साथ, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, और रीजी बी हैं हमारे साथ, डिप्टी डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस दिल्ली। एक छोटे से ब्रेक में जाएंगे, उसके बाद आएंगे वापस और ढेर सारी बातें यहां पर करने के लिए, ढेर सारे सवाल और फिर उसके जवाब। स्टे ट्यून्ड।
4: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
8: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
7: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
8: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप हैं हमारे साथ। मेरा नाम है शालिनी और आप सुन रहे हैं आशियाना। आशियाना में आज हम बात कर रहे हैं सेंसस 2027 को लेकर, यानी कि जनगणना 2027 को लेकर। यदि आपके भी कोई सवाल है उससे जुड़े हुए तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। 9868107070 है नंबर, 9868107070। चलिए अब आगे हम चर्चा को बढ़ा लेते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ तीन खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं इस विषय पर बातचीत करने के लिए। चैतन्य प्रसाद हैं हमारे साथ, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट, और रंजना देसवाल हैं हमारे साथ, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, और रेजी बी हैं हमारे साथ, डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टोरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस दिल्ली। जी अब मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि डेटा फिल करने के बाद क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कहीं रेपिटिशन हो डेटा का, और अगर ऐसा होता है तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं?
1: जो डेटा रेपिटिशन होने का तो चांस ही बहुत कम होता है, बिकॉज हमने जो HLBC होता है, मतलब जो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक है, उस

0: कोई एन्यूमरेटर आता है, तो क्या इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि किसी तरह के OTP या कोई ID वो डिमांड करते हैं, और अगर करते हैं तो वो करनी चाहिए या नहीं?
1: नहीं मैम, ये उल्टा सिटीजन एक्चुअली ना एन्यूमरेटर से पूछ सकते हैं अपने ओरिजिनल अपॉइंटमेंट स्लिप एंड आईडी कार्ड एंड QR कोड से वो चेक कर सकते हैं.
0: ठीक है,
1: अपॉइंटमेंट ना मतलब वो सही एन्यूमरेटर है या नहीं. द ओनर्स इज ऑन द एन्यूमरेटर टू प्रूव दैट ही और शी इज द राइट पर्सन अपॉइंटेड फॉर दिस जॉब.
0: ठीक है,
1: रादर ऑन द अदर वे राउंड बस डेटा पूछ सकते हैं, कोई आईडी कार्ड पूछने का कोई आवश्यकता है नहीं.
0: अभी कहाँ कहाँ हमारा सेल्फ एन्यूमरेशन जो है वो किस स्टेट में पूरा हो चुका है और कहाँ बाकी रह गया है, और जहाँ बाकी है उनके लिए आपको क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं?
2: मैडम बहुत सारा स्टेटों में अभी सेल्फ एन्यूमरेशन का पीरियड कंप्लीट हो चुका है. कुछ एक स्टेट है जो अभी आगे बढ़ेंगे, तो उनके लिए जो सेल्फ एन्यूमरेशन उन्हीं इलाकों में जो ओपन हो जाएगा HL लॉक पीरियड का 15 दिन पहले, तो उसी के लिए तो मेरा जो रिक्वेस्ट है सभी से मैक्सिमम सेल्फ इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं जो लोग है वो कर दीजिए, बिकॉज अपना डाटा खुद भरिए तो उसपे जो है ना डाटा का ऑथेंटिसिटी भी बढ़ जाएगा, तो ऊपर से एन्यूमरेटर का भी जो उसमें सहाय हो जाएगा. तो वो सेल्फ इन्फॉर्मेशन है जितना मैक्सिमम कर सकता है कर दीजिए. एक ही जो मेरे को स्पेशली बोलना है उसमें, जो अपना लोकेशन जो डिजिटल मैप के ऊपर जो तय कर रहा है वो जो एक्यूरेटली तय कर लीजिए, बिकॉज आपका SC ID उसी HLB के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए. ताकि जो है आपका जो इन्फॉर्मेशन जो SC पोर्टल में जो भर गया तो एन्यूमरेटर को फेच कर पाएंगे
0: प्रॉपरली. रंजना जी, आप हाउ मच टाइम इज इट गोइंग टू टेक टू कंप्लीट दिस होल प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन सबमिशन, फॉर्म सबमिशन?
3: So in case of Delhi, the deadline is 14th June.
0: ठीक है. Okay, okay.
3: For all India, it is September. But for us, it is June.
0: ठीक है. और अगर हम अब बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, हालांकि इतना डिटेल में तो जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोगों को शायद जानकारी मिल जाए तो अच्छा है. तो किस आर्टिकल के अंडर आता है ये सारा जो हमारा प्रोविजन है?
2: इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 246 आर्टिकल 246 है. अंडर यूनियन लिस्ट में सेंसस को लिस्ट किया गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू द सेंसस एक्टिविटीज.
0: ठीक है. और अभी हमने बात करी अलग अलग स्टेट्स की, यूटीज की अगर हम बात करें और स्नो बाउंड एरियाज की बात करें स्पेशली अगर हम, तो जम्मू एंड कश्मीर के कुछ प्लेसेस हैं और इसके अलावा हिमाचल है, उत्तराखंड है, वहां क्या सीन है, वहां क्या किस तरह का प्रोसीजर है, क्या कुछ खास है, अलग है या सेम है?
2: हाँ, स्नो बाउंड एरिया के लिए तो हमारा जो कुछ प्रोसीजर अलग है, बिकॉज जो हमारा फरवरी में सेकंड जो फेज किया जाएगा उस टाइम में उधर पूरी तरह से स्नो बाउंड होगा, जो लोगों का मूवमेंट है बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इसीलिए उनका जो पॉपुलेशन एन्यूमरेशन जो सेकंड फेज है जो सितंबर के बाद किया जाएगा.
0: ठीक है. और अभी हमारे पास और भी सवाल बचे हुए हैं, हालांकि इस वक्त हमें अब इजाजत धीरे धीरे बहुत ज्यादा नहीं दे रहा है, तो हमें जल्दी इसे कंप्लीट करना होगा. अभी यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, लौटेंगे वापस. अगर आपके भी कोई सवाल है तो 9868107070 पर हमें पहुंचा दीजिए. मैं लिसनर से कह रही हूँ अपने, आप सुन रहे हैं आशियाना आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर. मैं हूँ आपके साथ चालिनी, और हमारे साथ है तीन खास मेहमान हमारे. आज सेंसस 2027 पर हम चर्चा कर रहे हैं. चैतन्य प्रसाद है हमारे साथ, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट. और रंजना देसवाल है हमारे साथ, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल. और साथ में है रीजी बी, डेप्यूटी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस दिल्ली. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6. आते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद.

0: जी बिल्कुल, चले चलो चले चलो, यही कह रहे हैं हमारे सेंसस ऑफिसर्स, इन्यूमरेटर्स कह रहे हैं कि बढ़े चलिए, इस जो हमारा ये अभियान चल रहा है इसमें भागीदारी अपनी निभाइए, अपना कर्तव्य निभाइए और सेंसस 2027 को सफल बनाइए। और आज यहाँ आशियाना में हम बात कर रहे हैं सेंसस 2027 की ही, जनगणना 2027 की। आपके साथ हूँ मैं शालिनी, 102.6 सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो। हमारे साथ हैं खास मेहमान तीन जो हमें इस विषय पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, और चैतन्य प्रसाद हैं हमारे साथ IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट। रंजना देसवाल हैं हमारे साथ IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। और साथ में है रेजी बी, डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस दिल्ली। जी, इतनी सारी हमने चर्चा कर ली है, बहुत सारी बातें जान ली हैं। अब आखिर मतलब समय जो है जल्दी भागा जा रहा है, तो मैं आपसे कुछ छोटे छोटे से सवाल कर लेती हूँ। इस पूरे प्रोसीजर में आपको कभी सुनने में आया कि इस तरह की मिसकंसेप्शंस या मिथ्स या फिर डर लोगों के बीच में है, कुछ आपको ऐसी चीजें रिसीव हुई हैं?
1: यस मैडम, एक्चुअली ये जो मिसकंसेप्शन है, मिस जो डर फैला जा रहा है, तो वो बहुत ही ज्यादा सोसाइटी में है। आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, आपको पता है, अच्छी चीज के लिए भी सोशल मीडिया बहुत,
0: प्रोस एंड कॉन्स दोनों के,
1: प्रोस एंड कॉन्स आपको पता ही है। तो ये एक्चुअली आजकल देखे जा रहे हैं लोगों को, सेंसस को सिटीजनशिप के जुड़े जा रहा है, और वोटर लिस्ट से जुड़े जा रहे हैं, और मकान का जो ओनरशिप से जुड़ा जा रहा है, लेकिन इसमें कोई तरीके से सच्चाई नहीं है। तो सेंसस से लेके कोई भी इस तरीके से जो इश्यूज में कोई जो रिलेशनशिप नहीं है। तो हमारा जो मेन मकसद है, हमारा कंट्री में कितना लोग रहता है, उनका क्या परिस्थिति है, ये सब जानना है। इस डेटा को हमारा पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में इफेक्टिवली यूज करना है, यही जो सेंसस का मेन एम है।
0: बिल्कुल, अगर इन सब तरह की भ्रांतियों को दूर हटाना है, भगाना है और लोगों को सही जानकारी पहुंचानी है, तो उनसे क्या अपील है आपकी कि वो ना भटकें, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए?
2: मैम, बेसिकली सेंसस इज अ स्नैपशॉट ऑफ द पॉपुलेशन। बेसिकली हमारा जो भी स्कीम पॉलिसी डिजाइन किए जा रहे हैं सबके लिए, टेक एग्जांपल इवन द फूड सिक्योरिटी एक्ट, उनके लिए मतलब हर पॉलिसी में हमें मतलब गिना जाता है कौन बेनिफिशियरी है, वो बेनिफिशियरी हम सेंसस से जुड़े जाते हैं
0: जी।
2: तो जितना हम फोर्थकमिंग रहेंगे, हमारा टेलर्ड पॉलिसी उतना अच्छे से गवर्नमेंट को बनाने के मौका सब लोग के पास है।
0: बिल्कुल, तो लिसनर से मेरा यही, जी जी,
2: दिस इज द मेन गोल ऑफ सेंसस,

0: आजकल हम सब जानते हैं व्हाट द सोशल मीडिया कंपनीज बाय इज फॉर डेटा. डेटा इज अ न्यू ऑयल. सो लाइक दैट दिस इज द डेटा दैट गवर्नमेंट नीड्स फ्रॉम द सिटीजंस टू एनेबल टेलर मेड पॉलिसीज फॉर इट सिटीजनरी.
1: जी, और सिटीजन्स का भी जो एक ड्यूटी बनती है, अगर उन्हें अपने अधिकार चाहिए तो कर्तव्य भी निभाने ही होंगे, और उनको चाहिए कि वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्टली दें ताकि उन तक सही योजनाओं का लाभ पहुंच सके. ठीक है, आपकी तरफ आती हूँ रंजना जी, आप बताएं कि किस तरह का पब्लिक रिएक्शन अब तक आपको मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, दोनों ही रिएक्शन भी और रिस्पॉन्स भी. अच्छा, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है? आई थिंक नेगेटिव तो नहीं ही होगा. क्या है बताएं प्लीज.
2: I would say response is 90% positive. लोग पहले से भी बहुत हमने पब्लिसिटी भी किया है और लोगों को जानकारी भी है. People are more aware these days. तो they are cooperating.
1: ठीक
2: है. Repeated requests have helped. हम लोग ही सबसे अनुरोध करते रहे हैं बहुत समय से, तो उसका हमें नतीजा नजर आ रहा है. People are very cooperative. We are very thankful to them. So that, as Chaitanya said earlier, this is fuel for our policies.
1: Right.
2: जो ये डेटा मिलेगा उससे आगे मुझे कहाँ कहाँ हमारे एडवर्टाइजमेंट में आपको हमेशा प्रगति और विकास दिखता है. तो ये ही इसके लिए ये आवश्यकता है कि ये डेटा हमें मिले.
1: बिल्कुल.
2: और भ्रांति के बारे में आप कह रही थी, किसी को कोई आईडी कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है. कोई आधार आपसे मांगे नहीं देना है, ओटीपी नहीं देना है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है. ओनली इन्फॉर्मेशन देनी है, करेक्ट देनी है, वर्बल इन्फॉर्मेशन देनी है.
1: जी, और अगर कोई डरा धमकाकर या किसी भी अलग तरीके से उनसे ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो कहां पर वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, एक बार फिर बता दें.
2: डीएम के हर एक डीएम ऑफिस में एक ग्रीवियांस कमिटी सेटअप है एडीएम के अंडर. वहां जाके वो लोग अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और दे कैन कॉल द पुलिस इफ देयर इज एनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन.
1: ऑल राइट, थैंक यू सो मच. आपकी तरफ आना चाहूंगी, फटाफट से हमें जल्दी जल्दी से क्विक अपना रिस्पॉन्स दे दीजिए. चलते हुए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे ऑडियंसेस को, लिसनर्स को, कि उन्हें क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स बता दें उन्हें सेंसस को लेकर.
3: ओके, सेंसस में मेरा तो पहले अपील यही है, सभी सेंसस को तरफ से आप सहयोग दे दे, अच्छे इन्फॉर्मेशन, गुड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें. दैट इज माय रिक्वेस्ट.
1: ऑलराइट, चैतन्य जी,
0: हम सभी से अनुरोध यही है टू बी फोर्थ कमिंग, टू गिव डेटा व्हाट इज सॉर्ट बाय द एनुमरेटर्स टू हेल्प गवर्नमेंट इन मेकिंग दिस एक्सरसाइज अ बिग सक्सेस.
1: जी, मैं भी आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो कुछ भी आपने सुना ना उसे फॉलो करिए, ये आपके लिए ही है, आपके फायदे के लिए. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमें इतनी जानकारी देने के लिए. बहुत मजा आया मुझे सेशन में, मुझे खुद भी बहुत सारी जानकारियां मिली. आई होप हमारे लिसनर्स ने तो बहुत इंजॉय किया होगा. ठीक है, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे थे आशियाना, और मैं और अपने गेस्ट के साथ मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूं. हमारे साथ गेस्ट रहे हैं चैतन्य प्रसाद, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट, रंजना देसवाल, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, और साथ में रहे हैं रेजी बी, डेप्यूटी डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस दिल्ली, जिन्होंने हमें जनगणना के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी. चलते चलते ये खास गीत आपके लिए.

0: Biodiversity means the variety of life on Earth. Plants, animals, insects, fungi, and even microscopic organisms. It includes ecosystems like forests, wetlands, oceans, and grasslands that support life and maintain balance in nature.
1: Earth planet te thakya sob life thakya sob plants khan organisms khan animals khan ki hole bi life thakya sob biological diversity te constitute kore itu organisms ro species akla na hoy kina itu organism usarte thaka complex ecosystem surrounding je mate itu bi biological diversity lega part ase. There are three levels of biodiversity. एक तो genetic diversity माते, दूसरा तो species diversity, then third level is ecosystem diversity. Genetic diversity को तो this is diversity within a single species. That is इतु gene लगा diversity से. एक तो example खेती करा तो धान अलग अलग किस्म लगा धान थकी बो. कुनबा long variety, कुनबा short variety, कुनबा smell भाल थकी बो. कुनबा टेस्ट भाल था कि वो हियर इन नागालैंड वी हैव गॉट गम चावल विद इन राइस दीज आर द काइंड ऑफ वेराइटीज इतु विद इन ए स्पीसीज डाइवर्सिटी ऐसा इतु जेनेटिक डाइवर्सिटी को वो और एक टा लोकेलिटी ते एक टा लैंडस्केप ते अलग अलग किस्म लगा जानवर होले भी पक्षी होले भी प्लांट्स होले भी इतु के अमी स्पीसीज डाइवर्सिटी मत है दिस इज द सम टोटल ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी विद इन ए रीजन इतु उपते इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एक्टा थाकिबो दैट इज व्हेन द जेनेटिक एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी इंटरैक्ट्स विद द बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एनवायरमेंट इतु इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एक्टा जनरेट करे वी हैव गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम्स विद इन एन एरिया और इन ए लार्जर एरिया डेजर्ट असे रिवर इकोसिस्टम असे पॉन्ड इकोसिस्टम थाकिबो हिलॉक थाकिबो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम एक अलग पॉन्ड इकोसिस्टम ऑल थ्री लेवल जेनेटिक होले भी स्पीसीज डाइवर्सिटी होले भी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होले भी तैखन लगा अलग अलग सिग्निफिकेंस असे बायोडाइवर्सिटी

0: जेहिको नागालैंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी चे जो मुसेसियो
1: FM Tracoban
2: 103 MHz
1: News, Music and Entertainment FM 103 MHz
3: Good evening listeners, it is Akashwani Kohima FM Tracoban 103 MHz program dita kya huniya se aru tya hunibo apni gan live phone in program মানে রিকুয়েস্ট আছে রিকুয়েস্ট হিন্দি ফিল্ম গান প্রোগ্রাম লাইভ ফোন ইন আপনি গান ডায়ল করব আর মই আপনি গান কারণে বিচারি কিনে বজাই দিব এটা প্রোগ্রাম আছে এটা তো এই আপনি গান ডায়ল করব পারে এই নম্বরে 0370-224-3036 মানে আকো একবার কই দিয়ে আছে 0370-224-3036 আর এই নম্বরে ডায়ল করেছি কলে মানে আপনি কল তো রিসিভ করি না আপনি গান মাইয়া গানটা বাজাই দিয়া হব ওয়াইল লিসনার্স ক্যান আর জে জেকব আপনি সবক ওয়েলকাম করে আছে স্বাগত করে আছে নমস্তে আর সালাম কইনে জানিয়ে দিয়ে আছে ওয়েল এতে একটা ফার্স্ট কলার আই যাইছি তো মানে ফার্স্ট কলার রিসিভ করে আছে হ্যালো
4: জয়
3: মাতাজি
4: মেরা নাম পুরা বর্মা হ্যাঁ राजस्थान गांव का नाम अंशमल बुगला से बात कर रहा हूँ सर
3: ओके ओके आज कैसा है उधर में मौसम
4: सर मौसम बढ़िया है गर्माहट हो रहा है आपको उधर
3: यहाँ भी मतलब गर्म था अभी तो ह्यूमिडिटी शुरू हो गया और बारिश हो रहा था अभी थोड़ा बंद है अभी बारिश लेकिन और भी बारिश तो आएगा जैसा लग रहा है
4: हाँ जी हाँ जी सर
3: ठीक है आज पूरन जी आप कौन से गाना सुनना है
4: जी सर आज मूवी का नाम रहेगा अलबेला
3: अलबेला ना
4: हाँ जी हाँ जी
3: अलबेला हाँ अलबेला से कौन से गाना सुनना है
4: इसमें कौन कौन से गाने सर
3: बलमा बड़ा नदान नदम
4: जी
3: हाँ भोली सूरत दिल की
4: जी
3: धीरे से आ जा रहे धीरे से आ जा रहे तो दो थे दो बार है मतलब मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का भी है
4: नई वाली अलबेला नहीं है नई वाली चाहिए मेरे को
3: नई वाली अलबेला नहीं है ये पुरानी वाली है और नई वाला नहीं था नहीं
4: है
3: हाँ ये पुराना वाला है
4: तो फिर मूवी का नाम रहेगा तो मूवी का नाम रहेगा डार्क द फायर
3: डार्क द फायर
4: यस यस
3: ये फिल्म तो नहीं है हम लोग के पास हम लोग का इधर में
4: ये तो होगी सर डार्क द फायर नहीं है अभी तो मूवी का नाम अकेले हम अकेले तुम
3: ये तो होगा
4: तो इसमें कौन सा गाना है वो बता
3: नहीं। गाना तो बहुत है ऐसा जख्म दिया है
4: जी।
3: अकेले हम अकेले तुम ये टाइटल सॉन्ग है दिल कहता है दिल मेरा चुराया क्यों
4: जी।
3: राजा को रानी से यही है गाना तो
4: ऐसा जख्म दिया है वो सुनूंगा मैं सर
3: ओके ठीक है बजा देगा
4: सबसे पहले आप है
3: ओके
4: और मेरा दोस्त है राकेश है भगवान सिंह परवान जी है अभिनाथ जी है रमेश प्रजापति जी है गोल्डी भाई है
3: ओके
4: और बिमल है और कोलमा के कॉलर जहाँ जो भी कॉल मेरी आवाज सुन रहे हैं और जो मेरा नाम लेते हैं उन श्रोताओं के लिए क्योंकि मेरा उन श्रोताओं का नाम भी नहीं आता तो उनके लिए मैं सुनाना चाहता हूँ जो मेरा नाम लेते हैं उनके लिए
3: वेल थैंक यू सो मच आप लोगों आपको धन्यवाद बहुत आपने कॉल कर दिया इसलिए तो ये गाना बजा देगा आप सुन के मजा लीजिए ओके
4: थैंक यू
3: वेल लिसनर्स कैन फर्स्ट कॉलर ताई गाना मंगे से अकेले हम अकेले तुम फिल्म पर और गीत होनी बोतिया उदित नारायण शंकर महादेवन और आमिर खान लगा वास्ते

0: Well, aku call akhir si, mui call receive kurio si. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Good evening, Jaka sir.
0: Ah, good evening, good evening. Kini ga si, baik pun munda?
1: Ya, bahal si, aku mikirnya kasi gaji.
0: Ah, bahal tak gaji, bahal tak gaji.
1: Oh, baju musim tu iman, kete di gorong aja, hal ini iman noh ya.
0: Oh, acha acha.
1: Rasa itu, pani giri pasar.
0: Hai tu, hai, hai, pani giri pun isi nasi, tapi.
1: Hai, hai, hai.
0: तो आज की गाना होने वाले मना से भाई को मुंदा
1: तो फिर मिलेंगे एक मूवी थी तो फिर मिलेंगे
0: ना
1: हाय फिर मिलेंगे
0: हां फिर मिलेंगे ऐसे हुई
1: कहते बेताब दिल है धड़कनों कसम ये क्या गाना था कि
0: ओए होए होए सुनो निगम और श्रेया घोषाल ना हां
1: ये तो बजा दे
0: ठीक আছে गाना तो लंबा से आज भी कति दियो लाइ
1: ओ ओ ओ कुन गाना तो गाना एक से रानी तो इवन मीडिया थे इसमें आजकल इवन गाना होने चाहिए हले भी मैंने रेडियो पे रिक्वेस्ट करके तो फिर
0: एक मन से खुशी पाई ना
1: हाय हाय
0: हाय ठीक আছে ঠিক আছে ঠিক আছে तो बजाय दियो
1: डेडिकेशन करিব नाम को दियो
0: ঠিক আছে কই দিবি
1: अमर बसुमतारी बिमल बसुमतारी तिगाई जंगफार जुगिनर रंगपी रमेश पात्र अरुण पात्र लाकी अंदरी बसुमतारी सुनीता बसुमतारी चंद्रा तिमु
0: अच्छा
1: लखो भिले मेथा रखो भिले मेथा
0: ओके
1: धनंजय अभिजीत
0: ओके
1: कुबा के जमी वीरन हंसे कुलभूषण बोहरा বেশি যেমন মিটার সহি থাকা সব এগুলো লিসনার লিসনার করি আরে এর প্রিন্সি শিখে দিয়া
0: ওকে
1: কৃষ্ণ সিং ভগবান সিং শর্মার আরে পুরন বর্মা যেমন যে আসলে থাকছে সব আর আর যে চ্যাপ্টেন স্যার হেজং ম্যাম বরণিকা ম্যাম
0: ওকে
1: আর আপনি কবি
0: ওকে ওকে ঠিক আছে ভাইকুন মুন্দা থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি কল করে দিয়ে গেলেন दे ओके थैंक यू ओके बाय बाय वेल लिसनर्स कन इटिया होनी वो सेकंड कॉलर असे ताई बाइकन मुंडा सोनारी डिस्ट्रिक्ट असे सोनारी चारायडियो असम पर ताई कुरी असे तो इटिया होनी वो अपन लोग के सोनू निगम और श्रेया घोषाल लगे वास्ते फिल्म असे फिर मिलेंगे

0: Well, la Coca-Cola is this somewhere you receive greener, but younger.
1: हेलो जी नमस्ते
0: नमस्ते
1: जी सर, प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहे हैं, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से।
0: ठीक है ठीक है, प्रेम सिंह जी बताइए कैसे हैं आप?
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके मुझे और भी अच्छा लग रहा है।
0: ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: तो सर फिल्म का नाम है परदेश।
0: परदेश,
1: हाँ जी।
0: ओके परदेश।

0: कौन से
1: जी
0: कौन से गाना बोला?
1: ये दोनों एक दुल्हन वाला है ना,
0: ये
1: आई लव माई इंडिया,
0: आई लव माई इंडिया ना।
1: हाँ जी
0: हाँ हाँ हाँ ये बोलू ना, आई लव माई इंडिया। ठीक है ठीक है, किसकी आवाज में सुनना है आपको, कविता का सुनेगा या शंकर महादेवन का?
1: जी कविता जी की आवाज में।
0: कविता जी की आवाज में, ठीक है ठीक है, बजा देगा।
1: मोबाइल ऐप पे आपके कार्यक्रम सुन रहा हूँ सर मैं।
0: ओके, और कविता का तो बहुत खट्टा है, बहुत मतलब गाना तो बहुत कमती है। हाँ, 2 मिनट
1: जी जी
0: 45 सेकंड।
1: हाँ तो कम ही सुनवा दीजिएगा आप।
0: ओके ठीक
1: है, दूसरे कॉलर को मौका मिल जाएगा।
0: हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके,
1: ताकि श्रोता लाइन में लगे रहते हैं।
0: हाँ तो हाँ तो जी हाँ,
1: ये अभी वाइकर मुंडा जी का कॉल आया था, उन्होंने भी बातें बड़ी अच्छी कर रहे थे वो।
0: हाँ हाँ हाँ जी हाँ
1: जी हाँ, मोबाइल पे जब कार्यक्रम सुनते हैं ना हम, तो इस पर से प्रसारण मिलता है हमें।
0: ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है
1: जी।
0: तो किसको डेडिकेट करना है ये गाना?
1: ये गाना आपको डेडिकेट रहेगा।
0: ओके
1: जी, और उसके साथ में हमारा हेलो फरमाइश रेडियो एकता ग्रुप के सभी श्रोताओं को, भगवान सिंह परमार को, लोकेंद्र वर्मा, तुकाराम देव, केसे सिंह राजपूत, शिलोंग से सेली जी, आकाशवाणी लखनऊ की दीप्ति जोशी और माइकल मुंडा।
0: ओके ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद। ओके
1: ओके थैंक यू सो मच, मैं जय गोपाल से और रमेश चलर है हमारे दोस्त।
0: ओके थैंक यू। ओके वाल लिसनर्स का नीति होनी वो अपना लोग की कविता कृष्णा मुठी लगा वास्ते फिल्म से परदेश।

0: हेलो।
1: हेलो जी,
0: हाँ हेलो।
1: मैं ग्रांड नोरे
0: हाँ
1: जी, मैं ग्रांड नोरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री से बात कर रही हूँ।
0: हाँ तनुश्री ना, हम कल भी बात किया था ना।
1: जी सर। जी
0: हाँ अच्छा, आप
1: जी
0: तो सिंगर है बोल के सुना था, आपका तारीफ कर रहा था आपका 10 लोग।
1: जी
0: आप संगीत करता है, संगीत में भाग लेता है आप?
1: जी सर जी, आप याद रखते हो, मतलब वो तो अच्छा लगता है सर। आप सभी कॉलर का मैं सुनती हूँ ना, तो आप सभी कॉलर का मतलब सब याद रखते हैं, कौन क्या करता है कौन क्या नहीं।
0: हाँ मैंने आपने कल कहा भी था, और आपका दोस्त जो पिछली बार फोन किया था वो लोपिक बोल रहा था कि आप संगीत में बहुत अच्छा से गाता है बोल के, आपका आवाज़ ऐसा सुना था मैंने, इसलिए आपको
1: जी
0: बोल रहा हूँ। कैसा है
1: जी
0: आप तनुश्री?
1: जी सर, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं
0: मैं भी बहुत अच्छा हूँ।
1: जी? और सर, फिल्म का नाम रहेगा शिकारी
0: शिकारी,
1: जी।
0: शिकारी तो पूरा नाम ही होगा मेरे ख्याल में ना।
1: जी
0: देखिए शिकारी, देखिएगा शिकारियाँ कौन से वाला सुनना है?
1: वो तो
0: ओ बहुत खूबसूरत गजल ना, कुमार सानू का। हाँ
1: खूबसूरत
0: ठीक है बजा
1: गजल
0: दिया,
1: दिख रहा हो जी। सर मैं थोड़ा
0: गा के सुना दीजिए।
1: सा गा कर सुनाती हूँ जी। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख कर आज कल लिख रहा हूँ। सर आपको, हमारे सभी श्रोताओं को, मेरे पापा भी आपका कार्यक्रम मोबाइल पर सुन रहे हैं, तो मेरे पापा को भी डेडिकेट रहेगा
0: ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद तनुश्री। तो
1: जी।
0: आराम से सुन लीजिए अपने जो गाना मांगा। ओके
1: ओके बाय।
0: ओके बाय बाय। वेल लिसनर्स का रेटिया होनी वो अपने लोग के कुमार शानू लगा वास्ते फिल्म से शिकारी।

0: ওয়াল লিসনার্স খান, আপনি গান যিমান মানুহ শুনি আছে আপনি জানাই দিয়ে আছে কি আপনি গান শুনি আছে হিন্দী ফিল্ম গান প্রোগ্রাম লাইভ ফোন ইন দ্যাট ইজ আকাশবাণী কহিমা এফ এম ট্রাকপান 103 মেগাহার্টজে। আর যুন খান এতিয়া জানি আছে বলে আপনি গান বি এই নম্বরে কল করব পারে 0370224-3036। মো আকবার কই দিয়ে আছে 0370224-3036। হ্যালো হ্যালো
1: হ্যালো
0: হ্যালো
1: স্যারজি নমস্কার।
0: নমস্কার নমস্কার
1: স্যারজি, সেবা লোহাট এমপি বিদিশা সে বাত কর রহা থা স্যার আপসে।
0: ও আচ্ছা, আপনার শুভ নাম?
1: জি সেবা লোহাট স্যার।
0: সেবা লোহাট?
1: জি স্যার।
0: ওকে ওকে, ঠিক হ্যা ঠিক হ্যা। তো কেসা হ্যায় আপ?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ सर जी, कार्यक्रम को एंजॉय कर रहा हूँ और आपकी बातचीत काफी मन को लुभा रही है सर।
0: ओके ओके, बहुत धन्यवाद आपको।
1: जी शुक्रिया सर।
0: ओके शुक्रिया आपको भी। कौन से फिल्म का गाना सुनना है आज शिवा
1: सर जी? एक मूवी रहेगी कयामत।
0: कयामत?
1: जी सर।
0: हाँ, कयामत से कौन से गाना सुनना है
1: सर जी? वो एतबार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना।
0: ओके, अभिजीत का आवाज में ना?
1: जी जी सर।
0: अभिजीत और सदना सरगम?
1: जी सर बिल्कुल।
0: ओके ओके
1: सर जी, कुछ दोस्तों को याद करना चाह रहा था।
0: करो करो करो।
1: जी सर, हमारे मित्र है राजस्थान से पूरन वर्मा जी, गोल्डी जी, पुरुषोत्तम जी, भगवान सिंह परमार जी और तमाम सुनने वाले, और स्पेशली सर आपको ये गाना डेडिकेट रहेगा।
0: ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको एंड शुक्रिया।
1: जी शुक्रिया।
0: ओके थैंक यू। ओके है,
1: थैंक यू सर।
0: ओके थैंक यू, बाय बाय। लिसनर्स का नीचे होनी वो आप लोगों के अभिजीत और सदना सरगम लगा वास्ते फिल्म से कयामत।
2: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
3: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
2: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
3: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: नमस्कार
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: ओके, तो कैसा है? आप कैसा है?
1: जी बहुत बढ़िया है, और अभी सुबह बारिश हुई थी, अभी जो है मौसम ठंडा है और थोड़ी गर्मी से रात हुई है।
0: ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो क्या गाना सुनना है आज राकेश?
1: आज मुझे गाना सुनना है, फिल्म का नाम है हम तुम्हारे हैं सनम।
0: हम तुम्हारे हैं सनम
1: जी। ये नहीं मिलेगा?
0: आए, ए, मिल गया। कौन से गाना सुनना है इससे?
1: उसमें एक गाना है, खोए खोए दिन है तन्हा रात है।
0: ओके, सोनू निगम और अनुराधा पटवाल का।
1: अनुराधा पटवाल जी जी जी,
0: ठीक है बजा देगा।
1: तो दोस्तों को याद करना चाहता हूँ।
0: ठीक है, याद कर दीजिए।
1: सबसे पहले तो गाना आपको डेडिकेट रहेगा, तुरुण वर्मा, शिवा लोहट और अविनाश तेली, भगवान परमार, अंजलि बसुमतारी हैं, अमर बसुमतारी हैं और मांगीलाल चंदेल और राम नरेश कंजर गजरातोती और तमाम सुनने वाले श्रोता सब के लिए गाना डेडिकेट रहेगा।
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका। ओके সোনু নিগম আর অনুরাধা পাটওয়াল লাগা ওয়াস্তে ফিল্ম আছে হাম তুমারে হে সনম।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार।
1: हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
0: ओके भगवान सिंह जी बताइए कैसा है आप।
1: अच्छा है सर, आप तो बढ़िया हैं।
0: हाँ बढ़िया है मैं भी।
1: सर मुझे आज गीत सुनना है अनोखा अंदाज फिल्म से।
0: अनोखा
1: अंदाज
0: अनोखा अंदाज
1: और गाने के बोले आपसे पहले ना आपके बाद।
0: अनोखा
1: अनोखा अंदाज
0: ये फिल्म तो नहीं है, अनोखा दान है, अनोखा रिश्ता
1: तो
0: है।
1: सर आराधना का सुना दीजिए, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए।
0: ओके आराधना ना
1: जी।
0: रूप तेरा मस्ताना
1: मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए।
0: ठीक है बजा देगा
1: जी सर।
0: ओके
1: जी, तो कुछ दोस्तों को नाम ले सकते हैं सर।
0: हाँ ले लीजिए ले लीजिए।
1: अबे तो हमारे एक मित्र हैं दिलीप पाहुजा जी हैं, वो भी आपको लाइव सुन रहे हैं।
0: ओके।
1: और श्रीपाल गोयल जी हैं और वो भी आपको लाइव सुन रहे हैं। केशव सिंह राजपूत जी भी आपको लाइव सुन रहे हैं। सुनील झा भी आपको लाइव सुन रहे हैं सर। और हमारे केशव सिंह राजपूत जी हैं, राम बाबू शर्मा जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं, राकेश जी हैं और भाईकुंड मुंडा जी हैं और रमेश प्रजापति हैं, अमल भस्मचारी है, विमल भस्मचारी है और राकेश जी हैं शिमला से, आशुतोष जी, अविनाश जी, प्रेम सिंह सिसोदिया और मांगीलाल जी हो गए और भाईकुंड मुंडा जी हैं, गंगाधर जी, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे सर।
0: ओके ओके तो
1: और अविनाश जी सुन रहे हैं आपको लाइव, वो उनके साथ भी सुनना चाहेंगे।
0: ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओके
1: धन्यवाद सर।
0: ठीक है तब तो ওয়াল লিসনার্স খান টাইম বি একদম যাই যা আছে না জানি না, এই গান এটা এই গীত শুনি লব কিশোর কুমার লেখা ওয়াস্তে ফিল্ম আছে আরাধনা।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ
1: नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार।
1: कार्यक्रम चल रहा है क्या सर?
0: हाँ कार्यक्रम चल रहा है, खत्म होने वाला है अभी, 5 मिनट बाकी है। तो थोड़ा जल्दी बता दीजिए कौन से मूवी का सुनना है।
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ सर, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: ओके केसरी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने कॉल कर दिया। इसलिए तो कौन से मूवी का सुनना है आज?
1: तेजाब मूवी का सुनवा दीजिए।
0: तेजा
1: तेजाब
0: तेजाब।
1: जी,
0: ओके तेजाब फिल्म से कौन से गाना सुनना है?
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0: ओके अमित कुमार का ना।
1: जी, अनिल कुमार जी की है
0: हाँ
1: तेजाब।
0: ठीक है, समय भी खत्म हो रहा है इसलिए
1: हाँ
0: बजा
1: जी जी
0: देगा।
1: जी हमारे
0: ओके
1: भगवान सिंह परमार जी सुन रहे हैं, प्रेम
0: ओके
1: सिंह सिसोदिया जी, राम बाबू शर्मा जी, अविनाश तेली जी और जितने भी लाइव सभी के लिए रहेगा।
0: ओके ओके थैंक यू थैंक यू थैंक
1: थैंक यू, वेलकम सर। राधे
0: यू
1: राधे,
0: थैंक यू। ओके
1: राधे राधे।
0: राधे राधे। वेल प्रोग्राम शेष कर लेते हैं। मुझे जो है शेष जो होनी वो अपने लोग के अमित कुमार और खरोस लगा वास्ते फिल्म आ से तेजाब और तो गीत लोग थे। प्रोग्राम तो शेष कर हम किंतु समय 7:10 और 20 मिनट लगे नागामीज और इंग्रजीत रिजनल खबर दिया होनी वो और 7:30 पर आज आपको वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम और मैं अपनी हेन के लग कर 9:30 विथ मोर हिंदी फिल्म सॉन्ग्स दैट इज आरजेस चॉइस। सो स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग।

0: Yeah, globalization, modernization, urbanization, or technological advancement, bra. Traditional institutions or cultural practices, the gambir dog dia janagina, taibra. Indigenous bhasha komti hoija, oral traditions haraija, aro naujuman generations kan. Nichu cultural roots bra hatija upor pishi chanta janaise. Itokane Sri Yada for tribal heritage bachaikena, barhai dibli bhavanadi academic charja kuria aro seminars rakibli dorkar janaise. Universities laga dorkar janaikena governor bakwisik in Nagaland University bra, botli anidia kam korikena, interdisciplinary studies ti mono thaidibli, indigenous gyan systems takot kuridibli, local bhasha barhaikena, traditional gyan lokodi modern scholarship joraidibli koise. International Day for Biological Diversity Dindu Aji Chief Minister Nipurio Pra State Laka Dun Natural Heritage or Ecosystems Dubara Bajai Rakibali Koise. Ekta social media postage Sri Ryubra Kwisik State Ba Nagaland Laka Dun Biodiversity or Ecosystems Janba Manukan Culture or Jivan Rasta Jari Rakibali Diadu celebrate Kuriase. Tabra Kwisik Nagaland Dunia Laka Biodiversity Hotspots Laka Ekta Bhakasi or Natural Resources Jotam Kuri Rakibali Conservation Kam Takut Kuri Dibali Lage. Documented records is up to state 1,231 cultivated crop species di 105 crops kan jhum kiti di milai gina se. State di wild edible fruits kan 248 species takia si 120 vegetables, 52 edible flowers aro 58 kisam mushrooms kan takia se. Itu lukot milai gina Nagaland di 656 medicinal plant species, 58 bamboo species, 345 orchid species, 346 lichens, aro 280 fern species day, 560 indigenous local species, 147 commercial timber plants, aro kisaman komti pehijan kuria indigenous species milagina takia se. Faunal component day, state bra 183 species janwar aro butterflies, 67 mammals aro apes, noheli chiriyalaka, 541 species of Takiase, state 32 MPPN species, 149 fish, 35 upper snakes are lizards, are keko laga, choita upper species Takiase. Itulukot milagina molas laga, 50 kisam are 78 kisam kalaga insects can state document kore Takiase. Union Home Minister Amit Shah bra kwesi ki sarkar ba smart border project lakho kori digena pura simhona do bishi bachap aro mazbut banai dibole ase BSF laka investiture ceremony Nai Delhi de aji kotha kore Shri Shah bra kwesi project di drones radars cameras aro dosra technical resources milai gena rakhibole ase
1: वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस करकर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन रडार आधुनिक कैमरास और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा
0: होम मिनिस्टर बाकोसी इंटरनेशनल सीमा लगा सिक्योरिटी दो दुख लुकुत सामना करे बोले एक ता अलग काम न होए इट किंदो टेरिटोरियल जिम्मेदार हिसाबी राखी बोला गया श्री शाह बाकोसी के बिशी दुख था के लिए भी फोर्स ब्रा देश लगा गर्व मानी रखे ऐसे तबरा नोटन सिक्योरिटी धम के दे इलीगल इन्फिल्ट्रेशन नार्कोटिक स्मगलिंग नकली करेंसी भाकुरिया और हथियार और ड्रग्स स्मगलिंग रोकराखन जनाई से होम मिनिस्टर बा मिलाई के ना कंप्रेहेंसिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क रखी बोले और स्टेट पुलिस सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस इंटेलिजेंस एजेंसीज और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मौजूदी मिला जुरा रखी बोले कोई से डायरेक्टर ऑफ Animal Husbandry or Veterinary Services Nagaland pra idea African Swine Fever ESF to state laga alag alag jaga di thagya do saira kya se department ba koisi ke sub district veterinary offices or field staff lokoti milai kena surveillance bimar rokhai dia janani dia sample collection aro bimar phelai thagya rokhabali biosecurity kadam khan uthai ase department ba manu khan lokodi gauri achanak bimar noheli moria khan sub sio sirat veterinary institution noheli office lokoti khobor কৰিবি বুলি সলাহ দিছে। এইটোৰ মানুহখন লগতে অথৰাইজ নাকৰে বিক্ৰী নাকৰি বুলি নহ'লে গাঁৱৰী আৰু গাঁৱৰী মাংস খান

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।

0: अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
1: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
2: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

0: सीबीएसई ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमी की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोही अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।